सौ खंड ब्राह्मण डाहे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हरा हरा बड़ वड्डा है जन नानक नाम अधार टेक है हर नामे ही सो मंडारा गौड़ी पूर्वी महला।

पंजवा उमकियो हियो मिलन प्राप्ताए खोजत चरयो देखो प्रे जाई उमकियो हियो मिलन प्राप्ताए खोजत चरयो देखो प्रे जाई सुनत संदेशरो प्रे ग्रे सेज बिछाई प्राम प्राम आयो तो नजर ना पाई केन भेद हियरो धीरे न मानो मेल साजन हाँ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता धन सूती

गाबैरुम साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हो ताप, साध कै संग तुझे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कबहूं तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बसते को चर लहे, साधु के संग जरसे। साध के संग बसे थान उचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साचन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जनम। साध के संग नहीं कश काल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साध के संग कलूखत हर, साध के संग नरक पर हर। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे।

साध संग हर के गुण गाऊं। साध के संग नमन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर, साध के संग लगी परम मीठा, साधु के संग कड़ कर डीठा। साध संग पे आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बखियाने, साध की उपमा ते कुण ते दूर, साध की उमारी भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सता बेअंत। साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मोचते मोची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख कस बिन कोए, नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमले अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृढ़ समान, जैसे राज रंक को लागे तो लपवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक, ज्यों बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाओ, नानक जो पाव का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे तरि ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाहि अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे, नानक जन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी जे कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी क्या ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी के हो सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहिता। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञान का सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञान का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञान कौस दाया देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए यदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आम निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक,

वैसे जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो उकावै, तैसा रुख तैसा उसोग, उसदा आनंद तै नहीं बियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसे बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक पुरख ये जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जित जित कर राखे तैसा तरनाऊं।

रखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक

राष्ट्रपति कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिशर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते काय अंत न पावे, कई कोट पै बिमाने, कई कोट अंधे अज्ञाने, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभ्यज्ञ आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कोहिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया श्रमाए, कई कोट पर देश भ्रमाए, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सहजति जोगी, कई कोट राज्य रस भोगी, कई कोट पंखी सर पिपाए, कई कोट पाथर बृख निभजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवता नवेंद्र सरशतर, सगल समग्री अपने सुतारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण समर्थर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की ये चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थी वे, कई कोट चख नर पिशाच, कई कोट भूत परे सुकर मृगाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आपा लिप्त रिया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्म जी में मरे, कई कोट बोजनी फिरे, कई कोट बैठती खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट की एतनवंत, कई कोट माया में चिंत, जा जा पाना ता ता रखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन, तन कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड,

कई कोट होए अवतार, कई जुगत की न विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक कंकार।

कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रकाश, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवें अमर पै सद सद ही जीवें, कई कोट नाम गुण गावें आत्म रस सुख सह समावें। अपने जन को सास सास संहारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण जल तर में यल सोए। अष्टपदी करण करावण करण जोग, ज्योत पावे सोई होग, खिन में था प्यो था पनहारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार्य तर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे उजनीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखे अपने बड़ियाई, नानक समय रिया समाई, प्रभ पावे मानुख गद पावे, प्रभ पावे ता पात्र तरावे। प्रभ पावे बिन सास ते राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पत ते उधारे, आप करे अपन बिचारे।

आणक दृष्टि यवर न आवे। कौ मानुख ते क्या होए आवे, जोत सपावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब किश ले, जोत सपावे सोई करे। अन जानत बिख्या मैं रचे, जे जानते अपने आप बचे। पर मैं भूला दा दिशतावे, नमक माए चार कुंट फिरे आवे। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जा का दृढ़ कशु न आवे, तिस तत्काल दा दुष प्रगटावे। जाको अपनी करे बख्शीश, ताका लेखा न कने जगदीश। जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बाल नाही सहात, करण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जोत पावे सोई फुंथियो। कब हूँ ऊंच नीच में बसे, कब हूँ सो घर खरंग हसे। कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कब हूँ उब काश पयाल। कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानक या मिलावन हार। कब हूँ नृत्य करे बोपांत, कब हूँ सोए रहे दिन रात। कब हूँ महाक्रोध विकराल, कब हूँ सर्ब की हो तरवाल। कब हूँ होए बहे बड़ राजा, कब हूँ बेकारी नीच का साजा। कब हूँ अब कीर्त में आवे, कब हूँ पला पला कहावे। ज्यो प्रभरा खेत में ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कब हूँ होए पंडित करे बखियान, कब हूँ मौन धारी लावे ध्यान। कब हूँ तड़ तीर्थ स्नान, कब हूँ सिद्ध साधक मो ज्ञान। कब हूँ कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप ज्यो संगी दिखावे, ज्यो प्रभावे तमें नचावे।

आवे, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान कने विनाश, मंथन ना मरते कर अंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलिया इकटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए कवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सतगुर बाण सलोक। सुखी बसाय मस्कीनिया, आपने वार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सोवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत।

तो मूर्ख दा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता होए कर करबावे, तृण समान कर संग न जावे।

जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दिस जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हों छूटे।

एक आपका अमर है, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरते सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बट भागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक कर जाप, करण करावन करण हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसे दृष्ट करे तैसा होए, आपे आपे आप प्रभ सोए, जो किश की न सो अपने रंग, सबते दूर सबों के संग।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनो निध आवे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अंडिठ कीता तना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ी। आर्या नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई। तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे, चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह ब्रिद की पैज, पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां, झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवां मत उच्ची, मादा रखाए आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने, पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हिन माणिया दे माण। नितानिया दे ताण, निवटिया दी ओट, सचे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमला पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जीओ, आप जी दे हजूर अमृत वेले नूं मुख रखद्या दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर लड़ी वार चल रहे, श्री सहज पाठ तों परंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन। आनंद साहिब छे पौड़ियां दी अरदास, समुची सेवा निभाउंदिआं आप जी दे बच्चिआं पासों होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा। अगां तों समत बख्शिश करनी, समूह संगत दी कीती होई अरदास बेनती दर ते प्रवान करनी। कदम कदम लेखे विच लाउणा, आप जी दीआं बख्शियां दातां दे विचों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनीआं। दरों करों गुरसिखी जीवन नाम दान दी दात, अमृत वेले दा जागणा नितनेम दी दात बख्शिश करनी। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनीआं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के। सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ। इन्हां समयां नूं मुख रखद्यां आप जी दे हजूर समूह सात संगत जी वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो। पावन हुक्म दी दात बख्श के समूह संगत नूं निहाल करो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी। सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਜੋ

उमकियो हियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखो प्रे जाई। उमकियो हियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखो प्रे जाई। सुनत संदेशर प्रे ग्रे सेज विशाई, प्राम प्राम आयो तौ नजर ना पाई। केन बेद हियरो तीरे निमानो, मेल साजन हाँ तुज कुर्बानो। रहाओ एका सेज विशी तन कंता, तन सूती

होए कृपाल प्रभ मिलै सपागे। पयो कृपाल सत संग मिलाया, बूझी तपत घरै पिर पाया।

गौर परम चुकाया, जहां देखा ताहां फिर है पाई। खोलियो कपाट ता मान ठहराए, जा देखा ताह पिर है पाई। खोलियो कपाट

को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया, अंत नाम प्राप्त ही राग, हर जपते मन तन ते तीरा, दो कट घट पो भंजन पाइए, बौड़ जन्म ना जाया, भगत हित गुरु शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुरु मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जप्यो सात गुरु मत वाके, जम कंकर काल सेवक भगता कै, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार तराया, हे पवजल जगत शब्द गुरु तरिय, अंतर की दोदा अंतर जरिय,

सूरत को पाई है, शब्द सूरत बिन आई है जाई है, नान गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया, निरपो सतगुरु है रखवाला, भगत प्राप्त गुरु गोपाला, धन आनंद अनहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपो सो सिर नाही लिखा, आप अलेख कुदत है दिखा, आप अतीत जूनी संभो, नान गुरमत सो पाया, अंतर के गत सतगुरु जाने, जो निरपो गुर शब्द पछाणे, अंतर देख निरंतर बुझे, अनहद नाम आनंदो लाया, निरपो सो अब अंतर वसया, ऐनस नाम निरंजन रसया, नानक हर जस संगत पाई है, हर सहज सहज मिलाया।

का नाम अमोलक है, न कीमत की जय आपे सिर सब सजियन आपे वरती जय। गुरमुख सदा सलाहे सिर कीमत की जय। गुर शब्दी कमल बिगासिया हर रस पी जय। आवण जाना ठाके सुख सहित सबीज। श्लोक महला पहला, ना मैला ना धुंधला, ना भगवाना कच, नानक लालो लाल है सचा रता सच। महला तीजा, सहज वनस्पत फुल फल भवर वसै पे खंड, नानक तरवार एक एक है एको फुल रंग पौड़ी। जो जन लूज मन से उसे सूरे प्रधाना, हर सेती सदा मिल रहे जनी आप शाना। ज्ञानिया का महत है मन माहि समाना, हर जियो का महल पाया सच लाहे ध्याना। जिन गुर प्रसादी मन जीत्या जग तनह जताना। श्लोक महला तीजा, जोगी हुवा जग पवा, कर कर भीख्या लियो दर कह लेखा मंगी है, किस किस उत्तर देव। भिख्या नाम संतोख मड़ी, सदा साच है नाल, पेखी हाथ ना लद्धिया सब बद्दी जमकाल। नानक गल्लां झूठियां सचा नाम समाल। महला तीजा, जेत दर लेखा मंगीए सो दर सेव ना कोए, ऐसा सतगुर लोड़दा हो जिस जेबड़ वरना कोए। तिस सरन आई छुट्टी है लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सचा ओ शब्द दे। हिरदय जिस दै सच है तान मन भी सचा होए, नानक सचा हुक्म मन्या सची वडियाई दे। सचे माहि समावसी जिसनों नादर करे पौड़ी, सूरे इन्हा आखिया अहंकार मर दुख पवै। अंधे आप ना पछाननी दूजे पच जावै, आत क्रोध सो लूज दे अगे पिछे दुख पावै। हर जीव अहंकार न पहवई वेद कूक सुनावै, अहंकार मुए सिवे गति गए मर जन्मै फिर आवै। श्लोक महला तीजा, कागो होए न उजला लोहे नाव न पार, फिरम पदार्थ मन लै तन सवारन हार। हुक्म पछाण उजला सिर कास्ट लोहा पार, तिसना छोड़ै भय वसै नानक करनी सार। महला तीजा, मारू मारन जोगे मार ना सके गवार, नानक जे इह मारी है गुर शब्दी विचार। ये मन मारे ना मर जे लोचे सब कोय, नानक मन ही को मन मार सी। सात जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी, दोवें तरफा पायोन विच सकत शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बिनासा, गुर सेवे संत पाई है जब सास ग्रसा। सिमरत सास्त ना सोधनी, सिमर सास्त सोध देख उत्तम दासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा, होवा पंडित जोत की वेद पड़ा मुखचार, नवखंड मते पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौंकै पिटे न कोए, चौठे चौंके नानक सचा एको सोए। महला तीजा, आप पाए करे आप आपे नदर करे, आपे देवड़े आईया कहो नानक सचा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है और कंटक ना सूजै, आप हरे जग में बरतदा पापी सुलूजै। गुर शब्दी एक हर भेदी है हर जपर बूझै, सो हर सरनाई छुट्टी है जो मानस जूझै। मन विचार हर जाप करे हर दरगह सीजै। श्लोक महला पहला, हुक्म रजाई साखती दरगह सच कबूल, साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास, इश्क मोहब्बत ननका लेखा करते पास। महला पहला, अलग जो बदुकड़ो सारग पान सबाए, हीरा हीरा बिद्या नानक कंठ सुभाए पौड़ी। मनमुख काल व्यापदा मोह माया लागे, खिन मेहमार पछड़ सी पाए दूजे ठगे। फिर वेला हाथ ना आवई जमकर डंड लागे, तिन जम ने डंड ना लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छुडावनी सब तुद हलागे। श्लोक महला पहला, सर्बे जो यगश्मी दूख कनेरो आथ, कालर लादस सर लांगनो लाभना पूंजी साथ। महला पंजवा, पूंजी साचो नाम तू अखुट दरबे।

0: जित सहज उपजया फिर जन्म न मरना याय कमाए ते आया पाया साध सरना बोध दान देव गुर जिस अर्चाए ते पौजल तरना। श्लोक महला पंजवा। पहला मरण कबूल जीवन की षड आस हो सबन की ऋण का तो आओ हमारे पास। महला पंजवा। मुआ जवंदा पेग जवंदे मर जान जिन्ना मब एक स्यों ते मानस प्रधान। महला पंजवा। जिस मन वसे पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुगते न व्यापी जमनी आवे नीर पौड़ी कीमत कहन न जाइए ससा डोले से साधे ज्ञानी त्यानी हाँ कौन तो नो तो लय पढ़ कण समराता है उपद सब पर लय कर्ण कण समराता है कड़क सब भोले रिंस बाहे साब से क्या मान डोले गैर गभी अथार तो गुण ज्ञान मोले सोई काम कमाना किया तुर मोले तो दो बार के नहीं नान गुण भोले राग बाण मारो बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडिया कमन कुमत तुम लागे बुढ़ो गए परवार सगल स्यों राम न जपो अपागे रहाओ वेद प्राण पड़े क्या गुण गुण गए वेद प्राण पड़े का क्या गुण खा चंदन जस पारा राम नाम की गानी जानी कैसे उतरस पारा जियो बदोसो तर्म कर था पो अतर्म कहो कत पाई आपस को मनवर कर था पो कागो कहाँ गुसाई मन कह अंधे आप न पूजाए खाए बजावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म बिरथा जाई नारद बचन ब्यास कहते सो को पूछो जाई कैद कबीर रामे राम छूटै नाय त बूढ़े पाई बने बसे क्यों पाइये जो लो बनो तजे वकार जे कर बन संसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाइये रामा रंग रहो आत्मै राम रहाओ जड़ा पे समलेपन किया कफा गो कहाँ गुफा मैं बास मन जीते जग जीतिया जा ते बिख्या ते हुए उदास अंजन दे सबे कोई टुक जान माए बढ़ान ज्ञानन जे पाया ते लोइन परवान जटा पे समलेपन किया कहाँ गुफा मैं बास मन जीते जग जीतिया ताते बिख्या ते हुए उदास अंजन दे सबे कोई टुक जान माए बढ़ान ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतर्गत अर पेटिया अब मेरा मन कतू न जाए रेद से जाको फुरी तब काहू स्यों क्या काज तेरे कहने की गत क्या कहूं मैं बोलत ही भड़राज राम जे पाया राम ते पवे न बारे बार रहाओ झूठा जा डह के कना दें दो बर्तन की आस राज जे दिन पिया ते बौर न पई प्यार गुर प्रसाद जे बूझिया आसा ते प्या नाराज सब सा नदरी आया ओ आत्म प्या उदास राम नाम रा चाखिया हर नाम हर तार कौ कबीर चंदन प्या परम गया समुन्द्र पार उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे सुने सुन मिलिया समदर्सी पवन रूप होए जावेंगे बौरा मकाहे आवेंगे आमन जाना हूं तेजे का हुमे बोझ समावेंगे रहाओ चाव चुके पंचताज की रसना ऐसे परम चकावेंगे दर्शन छोड़ पे समदर्सी एको नाम ते आवेंगे जेता मलाए ते ती लागे तैसे कर्म कमावेंगे हर जी कृपा करे जो अपनी कौ गुर के शब्द सुभावेंगे जीवत मरो मरो फिर जीवो पुनर्जन्म न होई कौ कबीर जो नाम समाने सुन लिया लिव सोई जो तो पा तुम जो तुम मोको दूर करत हो जो तुम मोको दूर करत हो तुम तो मुक्त बतावो एक अनेक हो सल में आप कैसे परमावो रामो को तार लिया कहाँ ले जाई है सो दो मूत कहाँ दो कैसी कर प्रसाद मोह पाई है रहाओ तारन तरन बे जा लगे तारन तरन तबे लगे जबला ताद न जाने आ अब तो बिमल पहे कटी मैं कह कबीर मन माने आ जिन गाड़ कोड़ की है कंचन कह छोड़ गया सो रावण काहे की जद मन पावन जब जमाए के ते पगरे तार को नाम छावन रहाओ काल काल खम का कीना ए परपंच बदावन कह कबीर ते अंत मुत है जिन हृदय राम रसैन देवी गावा जियो तर मैं तो बसे पंच करसाना देही गावा जियो तर भर तो बसे पंच करसाना नैनो नगटी नैनो नगटू सरवण हरस्पद इंद्री क्या न माना बाबा अब ना बसोए गाँव करी करी का लेखा मांगे काय बचे तो नाउ रहाओ तरम राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी पंच किसानवा पाग गए लै बाद्यो जो दरबारी कह कबीर सुन रे संत खेती करो न बेरा आपकी बार बख्श बंदे को बोर न पो जल फेरा राग मारो बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनबो किरन देखिया बैरा गड़ी है बिन पै अनबोए मणंबै सौ दूर देखे ता पौ बै बैरा गड़ी है हुक्मे बूझे ता निरपोए मणंबै हर पखंड न कीजी बैरा गड़ी है पाखंड रता सब लोग मणंबै तृष्णा पा न छोड़ी बैरा गी अड़े ममता जालिया पिंड मणंबै चिंता जाल ता जालिया बैरा गड़ी है जे मन मृत को मणंबै सतगुर बिन बैराग न हो बैराग गड़ी है जे लोचे सब कोई मणंबै कर्म होवे सतगुर मिले बैराग गड़ी है सहजे पावे सोए मणंबै कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े मोको पौ जिल पार उतान मणंबै राजन कौन तुम्हारे आवै ऐसो पाओ बिदर को देखियो ओ ग्रीमो पावे रहाओ हाथी दे परम ते पूला सिर भगवान न जानया तुम रो दूध बिरद को पानो अमृत कर मैं मानया खिमी खीर समान साग मैं पाया गुन गावत रहन बिहानी कबीर को ठाकर अनंत बिनोदी जात न काहू की मानी स्लोक कबीर गगन दमामा बाजियो परे उन साने काओ खेत जो मांडियो सूरमा आप जुन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लर दीन कहेत पुरजा पुरजा कट मर कबू न छाडे खेत कबीर का शब्द राग मारो बाणी नाम देव जी की ये क्या ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके दुलो प्रभ सर की शरण परे हो मुक्त प्यो चाहूं जुग जाने हो जस कीरत माथे शतर तरयो राजा राम जबत को न तरयो गुरु दे साध की संगत भगत पता को नाम परयो रहाओ संख चक्र माला तिलक बराज देख प्रताप जम डरयो निर्भो पै राम बल गर्जत जनमन संताप हेरयो अम्बरीक कहो दियो अबे पदराप भी कर अद करयो नौने ठाकर पई सदा मैं तू अटल अज न टरयो भगत हेत पारियो हरनाक्ष नर सिंह रूप होए दे तरयो नामा कहे भगत बस केसव अज हो बल के द्वार करो मारू कबीर जियो दीन बसारियो रे देवाने दीन बसारियो रे पेट परियो पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म हारियो रहाओ साध संगत कब होनी की नी रजो तंदे झूठ स्वान सुकर बाय जे पड़गा चाले उठ आपस को धीर कर जाने और इनको लगमात मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दो जग जात कामी क्रोधी चातरी बाजी गर बेकाम निंदा करते जन्म सरानो कब न सिमरियो राम कह कबीर चेते नहीं मूर्ख मुग्ध गवार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार राग मारू बाणी नाम देव जी, बाणी जय देव जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद चांद सत भेते आ, नाद सत पूरे आ, सूर सत घोड़ सत दत्त किया, अबल बल तोड़िया अचल चल थपया, अकड़ कड़िया तां प्यो पिया, मन आदि गुण आदि वखाणिया, तेरी दुर्दा दे समान्या रहाओ, अर्ध को अर्दया सरद को सरदया, सल को सल समान आया, बदत जय देव को थमे रमया, ब्रह्म निर्वाण लीन पाया, कबीर मारू राम सिमर पै ताहेगा मन, पापी जीड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा रहाओ, लालच लागे जन्म गवाया माया परम पलाहेगा, तन जो मन कर गर्म न की जाए कागज ज्यों गल जाएगा, जो जम आए केस कह बड़के ता दिन किसी न बसाएगा, सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। राग मारो बाणी रविदास जियो की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब वाहिगु सईं मेरा माथे छत तरे रहाओ, जा कि शो जात को लागे ता पर तू ही तरे, नीचो ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे, कै रविदास सुनु रे संत हर ज्यो ते सबे सरे मारू, सुख साग सुरत चिंतामन काम ते नंबा जा के रे, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध नाम दे करता ता के रे, हर हर हरना जप सरसना अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ज्ञान प्राण बेद ज्योति ससर माही, ब्यास विचार कहो परमार्थ राम राम सरनाही, सहज समाध उपाध रहत होए बड़े पाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म मरण पै पागी, तुखारी सन महला पहला बारह महा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा प्रभु कमाया, सिर सिर सुख सामा दे सो तू भला, हर रजना तेरी क्या गत मेरी हर बिन कड़ी न जीवा, प्रे बाद हेली कोई न बेली गुरमा अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन तू सुनया तम रामा, बबिया प्रो बोले कोकल बाणिया सा तन सब रस चोले अंक समाणिया, हरे अंक समाणी जा प्रपाणी सा सुहागण नारे, नव कर था मैल कर उचो निज कर वास मरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस बास रंग लावे, नानक प्रियो प्रचवे बबीवा को बल शब सहावे, तू सुन हर रस पीने प्रीतम आपने माता रव तरवाने, कड़ी न बिसरे क्यों कड़ी बसारी हों बलहारी, ओ जी मां गुण गाए ना कोई मेरा हूं किस केरा, हर बिन रहन न जाए ओढ़ गई हर चरण वास है पै पवे शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सो पावे गुर शब्दी मन तीरा, बरसे अमृत बूंद बान बरसे अमृत तार बूंद सहामणी, सा जिम ले सह सुबाए हर स्यो प्रीत बाणी, हर मंदिर आवे जा प्रापावे तन ओ बेगुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण ओ क्यों कंध वसारी, ओनू कन छाए बरस बाए मंत्र प्रेम सिखावे, नानक वरसे अमृत बाणी कर कृपा कर आवे चेत बसंत भला,
1: मैं फिर कर बहुड़े फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे, बिरह बिरोतन छीजे कोकल अंब सुहावी बोले क्यों दुखंक सही जय, अवर पवनता फूली डाली क्यों जीवा मरमाए, नानक चेत सहज सुख पावे जे हार वार कहर तन पाए, वह साख भला साखा वेश करे, तन देखे हर द्वारा वो दया करे, आ वो दया करे कर आओ प्यारे दुत तारे, तुझ बिनत न बोलो कीमत कौन कह तुझ पावा, देख दिखा बैठोलो तू न जाना अंतर मन हर का मैल पहचान, नानक वैसा की प्रभा वै सुर सद मन माना, महा जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे, थल तापै सिर पार सा तन बिनो कर, तन बिनो करें दी गुण सारे दी गुण सारी प्रभावा, साचे मैल रह बैरागी आवं दे तावा, ने माने तानी हर बिन क्यों पावे सुख मैली, नानक जेठ जान तिस जैसी कर मिले गुण गैली, आषाढ़ भला सूर गगन तपै धरती दुख सह सोख अगन पकै, अगन रस सोख मरिए तोख पीसो कीर्तन हारे, रात फिरे छाया तन तकै टीट लवे मन बारे, अवगुन बांध चली गु दुख आगै सोख तिस नाल संभाले, नानक जिसनो ये मन दिया मरण जीवन प्रभ नाले, सावन सरसवना कन वर्ष रुत आए, मैं मन तन सो पावे फिर परदेश सिदाए, फिर घर नहीं आवे मरिए आवे ना मन चमकड़ा, सेज अकेली खरीद हेली मन पया दुख माए, हर बिन नींद भूख कैसे का बर्तन न सुखावे, नानक सा सुहागन कंती फिर कै अंक समावे, पादो परम पुली भर जो बन पछतानी, जल तल नीर परे बरस रुते रंग बानी, बरसा निष्काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवै बबीहा, बोले भुयंगम फिर डसंते मच्छर डंग सार पर सुबर, बिन हर क्यों सुख पाइए, नानक पुछलो गुर अपने जै प्रभ तै ही जाइए, सुना पिरा सातन चूर मोई ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खोई, झूठ भी गुती ता पिर मोती कूकै का से फूले, आगे काम पिछे तुझा डा देख चलत मन डोले, दै जसा खरी हरियावल सहज पकै सो मीठा, नानक असन मिलो प्यारे सतगुर पे बसीठा, कतक किरत पया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै तत् जलाया, दीपक रस्ते लो तन फिर मिलो तन माया सरसे, अवगुण मारी मर नसी जय गुण मारी तम मरसे, नाम भगत दिन कर बैठा जो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कपड़ दर खोलो एक कड़ी खट मसा, मंगर महा भला हर गुण अंक समावे, गुणवंते गुण रवे मैं फिर निचल पावे, निचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सवाया, ज्ञान रतन गुणंक समाने प्रभा ने ता पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख ला, राम नाम दुख भागे नानक सातन नहा प्यारी, अब भक्ति फिर मांगे पोख दुखार पड़े, वंत्र निरस सुख है आवत की नाही, मंतन वसै मुखे मंतन रब रहा, जग जीवन गुरशब जी रंग माणी, अंड जेर से खड़गड़ जो समाणी, दसन दो दया बदाते गत भाव मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया, हर्षो प्री सनो माघ पुनीत पई, तीरतंत्र जाने साजन सहज मिले गुण गैंक समान्या, प्रीतम सुना गुणंके सुन प्रभंके, तुद पावा सरनावा गंग जमन तै बेनी संगम, सास मन समावा पुनदान पूजा परमेश्वर, जुग जुग को जाता नानक माघ महारस हर जप वर्षर तीर्थ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुपाया, अंधन रहस पया भोगवाया, मन मोह चुकाया जान तिस पाया, कर कृपा कर आओ बोते वेश करी फिर बाजो, महली लाना ताओ हार डोर पाठ नंबर फिर लोड़ी सिंगारी,

नानक मूर्ख वह न चेता। क्या सूझ रहे न देरी आ दूजा पैर पै जाग चेती राम वखर राख मुये खाजे खेती राम राखो खेती हर गुरहे ते जाग चो न लागे जाम मगना जावो ना दुख पावो जमका डरपो पागे।

महल बोला यड़िए बिल ना कीजे, अंधन रतड़िए सहज मिली जय, सुख सहज मिली जय, रोस ना कीजे, गर्भ निवास माणी, सच राती मिले मिलाई, मनु खावन जानी, जब ना चीत।

सच साच समाया चुकाया मन जानो सच साच बताता सच रता साच मिले मन पावे सच उपरव न दिसे सच साच समावे मोहन मोह लिया मन मेरा बंधन तो खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समान नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया तो प्यारे सच कर खोज लहे साचा गुरथानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो

गुण राम गारा गुण गाए राम रसाए रसिया गुर ज्ञान अंजन सारे त्रै लोक दीपक सब चानन पंच दू संगारे पै काट निरपो तरह दुतर गुण गुण मिलिए कार सारे रूप रंग प्यार हर्षवार आप किया कृपा थारे। हे मन मेरेया तू क्या ले आया क्या ले जय श्री राम। हे मन मेरेया तां छुट सी जा परम चुका श्री राम तन सांच हरा नाम बकर गो शब्द पाओ पछाणे मैल दुर्मत शब्द निर्मल मैल कार सच जाने पत नाम पावे कर सिदावे चोल अमृत भी रसो हर नाम त्याई।

प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सद सारिया। गुर कै शब्द मिलया, मैं प्रीतम हाँ सतगुर पिटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम।

मैं प्रीतम देव मिलाए, अंधन गुरु गोपाल ते आई, हम सतगुरु विटों कुमाए, हम पात्र गुरनाव, भव जल तारिय राम, गुरदेव शब्द सुफाए, मैं मूर निस्तारिय राम, हम मूर मुक्त किसे मित नहीं पाई, तू अगम बढ़ जाने आ, तू आप दयाल दया कर मिले, हम निर्गुणी ने माने आ, अनेक जन्म पाप कर पर मैं हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लागे सतगुर पाए, गुर पार समलो, मिल कंचन होया राम, ज्योति जोत मिलाए, काया गर्स होया राम, काया गर्स होया मेरे प्रभु होया, क्यों सास गिरास बिसारी है, आदेशा गोचर पकड़ा गुर शब्दी, हाँ सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आ गए शीस पेट देओ, जे सतगुर साचे भाव, आपे दया करो सुख प्रभ दाते, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगमगा अपरम्पर अपरपरा, जो तुम जावे जगदीश दे जन पौ बिकम तरा, बिकम पौ तिन तरिया सोयला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति जोत मिली जोत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगमगा अपरम्पर अपरपरा, तुम स्वामी जग अगम था, तू घर घर पूरया, तू अलख प्यो अगम, गुर सतगुर बचन लिया, तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संग सत्संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, हर गुरमुख शब्द खिन खिन हर नित जवे, जहाँ बह गुरमुख हर नाम बोले।

सब करता शेषनाथ, किंतु त्या में राम जिनका तुरलेख मात, जिनको तू तुर हर लिखिया स्वामी, हर तिन हर हर नाम आरा दिया, तिनके पाप एक निमक सब लाते, जिन गुरबचनी हर जापया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हो प्यास नाथ, तू जग जीवन शिष्ट जगदी सब करता शिष्ट नाथ, तू जल थल महिल भरपूर सब पुरसातनी, जिन जप्या हर मन चीत, हर जप जप मुकत कनी, जिन जप्या हर दे मुकत प्राणी, जिनके उजल मुखर द्वार, ओ हलत बल जन पे सोहेले, हर राख ले रखनहार, हर सत्संगत सजन सुनो पाही, गुरमुख हर सेवा सफल बनी, तू जल थल मिल भरपूर सब प्रसाद तनी, तू थान तन तारेक हर एक कौरव रेया, वन तन त्रिपवन सब श्रेष्ठ, मुख हर हर नाम चव्या, सब

दर्शन देव करते जिठा हृदय नाम संसारे चव्या तू थान थनंतर हरेक हरे को रव रहया तेरी भगत भंडार जिस तू तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मैं स्वामी तिस मिले जिसके मस्त गुरहात तिस हृदय हर गुण हर टिके हर गुण हृदय।

मेरे निमक निमक दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा। आस पे आसी पिर कह ताई, जो चात्रक बूंदे रे, कहो नानक जी अड़ा बलहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे, तू साचा साहिब सहा अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण है चेता, प्राण सुखदाता गुल मोजाता, सगल रंग बन आए, सोई कर्म कमावे प्राणी, जे हा तुम फुरमाए, जा को कृपा करी जगदेसर, तिन सा संगन जिता, कहो नान जी अड़ा बलहारी, ज्यो पिण तो दिता, निर्गुण रख लिया, संतन का सदका, सदगुर टाक लिया, मैं पापी पड़दा, ठाक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अवनासी अवगत स्वामी, पूर्ण पुरख विदाते।

था कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी है रे अगम गोचर न जाए लख्या गुरपुरा मेरा लखा भी है रे रहा जिसा पे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जान को हर लेवला भी है रे साव को बहुत करे हर केरी हर पावै सो थाए पावी है रे हरा नाम मोलक हर पै हर देवै नाम त्या भी है रे जिसनो नाम दे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छुला भी है रे हरा नाम राधा से धन जन कही है जिस मस्तक पाग तुर लिख पावी है रे तिन देखे मेरा मन बिकसै जो सोत मिल मात गल आवी है रे हम बार कर पिता ब्रह्म मेरे मोको दियो मती जे तर पावी है रे जो बछड़ा दे गौ सुख मान है त्यो नानक कर गल आवी है रे केदा राम अल्लाह चौथा कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे सतगुर के चरण

रहोरे, मिल सत्संगत कीजे हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट हर प्रेम रसायन, राम राम नाम रसायन, हर राम राम हर राम नाम राम रमोरे, अंतर का मान जोर तू किच किच किच जानता, ये दूर करो अपन घोरे, जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे, केदारा महला अपन मां कर दूजा, इको अंकार सतगुर प्रसाद माई संसंग जागी, पैरंग देखा जबती नाम लाने रहाओ, दसन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बिडानी, अब गुर पायो है सह सुखदायक, दर्शन देखत मन लपटानी, देखत मोदर रहस मन उपजो, नानक प्रय अमृत बानी, केदारा महला पंजमा कर तीजा, इको अंकार सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दुखी एक मन अनाथ, राख हो कृपाल रहाओ, अनक जतन गवन करो, खट कर्म जुगत्यान तरो, उपाव सगल कर हार्यो, नह नह हुटे दर्ण बंधन करना पते, पव हरन हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, पव चरण प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे परम मोह सागर, लग संतना पगराल, केदारा महला पंजमा कर चौथा, इको ओंकार सतगुर प्रसाद, सरनी आयो नाम निदान, सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पितर, मांगन को हर दान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर, कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी, हार गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दामोद निर्मल कथा ज्ञान, नानक कौ हर के रंग रागो, चरण कमल संग ध्यान, केदारा महला पंजमा, हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ, तुम देवो अपनो राहो, तुम देवो अपनो नाव राहो, करो सेवा सत पुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कवन रूप देरो कवन ठाओ, सर्व प्रतपाल सगल समाल सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विधाते घट घट तुझे दिखाओ, केदारा महला पंजमा प्रह की प्रीत प्यारी, मगन मनै मैं चितौ आसा, नैनो तार तुहारी रहाओ, ओए दिन पैर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी के हारी, खुले कपट तपट बूझ दिसना, जीवो पेक दरसारी, कौन सो जतन उपाय कनेहा, सेवा करो बिचारी, मान अपमान मोह तज नानक, संत संग उदारी, केदारा महला पंजमा, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोविंदे, अपना नाम जपाओ रहो, कार लिए प्रवान बिख्याते, साध संग मन लावो, ब्रह्म पोमो काटे गुर बचने, अपना दर्द दिखाओ, सब की रेन होए मन मेरा, अंग पुत जावो, अपनी पग दे दे अल्लाह, बड़पा की नान कर पावो, केदारा महला पंजमा, हर बिन जन्मा कार्त का जात, तई गोपालान रंग राचत, मिथ्या पहर दिखात राव, तन जोधन सम पैसो पोगवे, संग नंद निमित मात, मृग तृष्णा देख चो बावर, ध्रम छाया संग रात, मान मोहमा मद मत मोहत, काम को क्या खास, कर गए लो दास नानको, पबजो हो सहास, केदारा महला पंजमा, हर बिन कोई न चाल साथ, दीना नाथ करना पद स्वामी, अनाथा को नाथ राव, सुत संपद भिख्या रस भगवत, नह निवत जम कह पात, नाम दान गाव गुण गोविंद, उदर सागर कह खाद, सरण समरता का तगोचर, हास्य में दुख लाद, नानक दीन तू जन बाछत, मेले लिखत रमाद, केदारा महला पंजमा कर पंजमा, इको अंकार सतगुर प्रसाद, बिसरत नाय मन ते हरी, अभे प्रीत महा प्रबल पई आन बिख्या जय जा, बूंद कहाँ त्याग, चात्रक मीन रहत ना करी, बूंद कहाँ त्याग, चात्रक मीन रहत ना करी,